ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। अमलन मुमकिन ही नहीं है कि हकीकी तकवा, एक मुकम्मल तकवा, एक वाकई तकवा इंसान के अंदर आ जाए, क्योंकि जिस तकवे की उमूमन बात की जाती है कि इंसान ज़ाहिरी एतबार से मसल्ले पर रहे और ज़ाहिरी एतबार से इबादतों में मशगूल रहे, खुद ये तो बहुत से लोग करते थे। अब मूसा अशअरी जैसे आपको मिल जाएंगे, खवारिज जैसे मिल जाएंगे आपको, करते थे, यही करते थे। लेकिन उनके अंदर ये शऊर नहीं था, इतनी समझ नहीं थी कि ये महसूस कर सकें कि इस वक्त हमारी जिम्मेदारी क्या है, अपने सही रास्ते का इंतखाब कर सकें। जब तक ये वाला शऊर पैदा नहीं होगा, इंसान दीन के सही रास्ते पर नहीं चल पाएगा, और नहीं कि सही रास्ते पर नहीं चल पाएगा, ये वो जगह होती है कि जहां पे शैतान आके दीन को ही बहाना बनाता है दीन से हटाने के, ये बदतरीन कैफियत होती है कि जब दीन बहाना बन जाए दीन से हटने के लिए, जब कुरान बहाना बन जाए अली से दूर होने के लिए, है ना, तारीख याद है सबको, बदतरीन कैफियत होती है इंसान की। इस मरहले को पाए बगैर, इस मरहले तक पहुंचे बगैर इंसान वाकई तकवे को टच नहीं कर सकता। आइए इसके बाद अमीरुल मोमिनीन मौलाए मुत्तकियान हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के कलमात क़िसार में, इस कलमे पर जो हमारी गुफ्तगू चल रही थी, इससे पहले आपकी खिदमत में अर्ज किया कि मौला ने फरमाया है कि अल्लाह ने ईमान को फर्ज किया ताकि तुमको शिर्क से पाक कर सके, नमाज को इसलिए कि ताकि तुमको तकब्बुर से बचा सके, ज़कात को रिस्क का सबब बनाया, रोज़े को इसलिए ताकि तुम्हारे इखलास का इम्तिहान हो सके, और हज को दीन की तक़वियत के लिए फ़र्ज किया। इस पे हम लोगों की बात चल रही थी मुख्तलिफ मराहिल से गुजर के, उसके ज़िन में जो आयतें थीं उन आयतों पे हम बात कर रहे थे, और पिछले हफ्ते आखिरी आयत पे बात हो गई थी, उसके नतीजे पे बात करके, और फिर उसके बाद कुछ रवायतों पे गुफ्तगू करेंगे, और फिर इसके अगले हिस्से पे इंशाल्लाह जो हज के बाद इमाम ने फरमाया है उस पे बात करेंगे। हुस्न इत्तेफाक है कि अय्याम हज हैं, और उसमें ये हम लोग हज पे, चूँकि सिलसिलेवार गुफ्तगू चलती है कि जो नौबत जिस कलमे की होती है उसी पर बात चलती है, लेकिन बाज़ औक़ात ये हुस्न इत्तेफाक हो जाता है कि हालात के एतबार से गुफ्तगू आके फिट हो जाती है। हमारी गुफ्तगू जिन आयात पे हुई थी उसके ज़िम्मे पिछले हफ्ते इस जगह पे बात ख़त्म हुई थी कि हज दीन का अहम सुतून है, और इसका जो महवर है वो अल्लाह की याद है और तकवा है। इस हद तक वहाँ पे अल्लाह के लिए, अल्लाह से करीब होने के लिए इंसान से बहुत सारी चीज़ें, अगरचे हमारी नॉर्मल ज़िंदगी, इसके लिए ही वो वहाँ पे भी एक मतलब फिर आमादा किया जाता है, हमारी ज़िंदगी के सारे काम इसलिए होने चाहिए कि हम अल्लाह से करीब, अल्लाह के लिए होना चाहिए। कोई काम ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसमें अल्लाह की कुर्बत ना हो। दूर होने वाला तो अलग बात है, हमने किसी मौके पर आपकी खिदमत में जिक्र किया था ना कि कुरान कहता है कि जिन्नात इंसान को सिर्फ इसलिए पैदा किया गया कि ताकि वो हमारी इबादत करे, तो हमारे ऊपर लिखा है ओनली फॉर इबादत, कुरान की आयत का मफहूम यही तो है ना। मिसाल भी हमने अर्ज की थी आपकी खिदमत में कि अगर पानी की टंकी पे लिखा है कि सिर्फ पीने का पानी हो तो आप उससे वजू भी नहीं कर सकते, अगर वजू भी करेंगे तो वजू भी बातिल है, वो सिर्फ पीने का पानी, आप उससे वजू भी नहीं कर सकते। जिस चीज के लिए मखसूस कर दिया गया है देने वाले ने, वक्फ करने वाले ने, आप उसी में उसको यूज कर सकते हैं। अल्लाह ने हमको खल्क किया और करके बताया कि तुमको हमने सिर्फ इबादत के लिए खल्क किया, ओनली फॉर इबादत। अब हमको हक नहीं है कि हम इबादत के अलावा कुछ और करें, यह अल्लाह का लुत्फ है कि उसने हमको मुबाह चीजों की भी इजाजत दे दी, यह अल्लाह का लुत्फ है कि उसने कहा कि ठीक है मकरूहात पे भी हम तुमको छोड़ देंगे, वरना उसूल के मुताबिक सिर्फ इबादत। लिहाजा हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम जो कुछ भी करें सिर्फ अल्लाह के लिए करें, बस सिर्फ अल्लाह, अल्लाह के अलावा कुछ और नहीं। हज वो मौका है कि जहां पे एक मरतबा फिर इसकी तमरीन कराई जाती है, आगाज होता है लब्बैक, लब्बैक का मफहूम तो जानते हैं आप, यानी अल्लाह की जो आवाज

इहराम सब के लिए सेम हो, कहाँ पे रुकना है, कहाँ किस टाइम जाना है, कहाँ से, सारी सारे अहकाम मसावात, बल्कि और उससे आगे। अभी वो चूंकि उस तफसील में एक एक रुकन के फलसफे में बात नहीं कर रहे हैं, लिहाजा सिर्फ इशारा कि बाज ऐसी चीजें हैं कि जहां पे इंसान को इनकिसारी करनी पड़ती है, इनकिसारी यानी अपने नफ्स को तोड़ना पड़ता है, तब कहीं जाके वो रुकन पूरे होते हैं, वो चीजें पूरी होती हैं मुख्तलिफ जिहाद से। लिहाजा जहां पे एक तरफ से इबादी एतबार से इंसान को आमादा किया गया और दीन से नजदीक लाने की कोशिश की गई, वहीं दूसरी तरफ से सामाजिक एतबार से, क्योंकि जब तक ये सारी चीजें मिलेंगी नहीं तब वाकई इंसान सही दीनदार नहीं होगा, तौहीद से नजदीक नहीं होगा। ये थोड़ी हो सकता है कि एक इंसान मसलन मस्जिद में आए, अच्छा खासा सब कुछ दे, लेकिन बाहर जाके वही तकब्बुर, वही अनानियत, वही बंदगी नहीं हुई। मुख्तलिफ लाइफ स्टाइल को, वो मुकम्मल लाइफ स्टाइल को हमको चेंज करना पड़ेगा, वो बनाना पड़ेगा कि जो इलाही अल्लाह को क्या पसंद है। हम ये तो देखते हैं ना कि हम जो लाइफ स्टाइल जो जी रहे हैं ये किस तबके को पसंद है, कैसे अफराद को पसंद है, किस कल्चर से मैच करता है, किस कल्चर से मैच नहीं कर, अपने आप को उस एतबार से ढालने की, ऐसा होता कि नहीं होता? आजकल मुकाबला है इसका, खास करके जो वेस्टर्न कल्चर है उसको हम बहुत ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं, ऐसे रहेंगे, ऐसे बोलेंगे, ऐसे ये करेंगे, फला करेंगे, ये सारी चीजें। यानी दरवा के हम वेस्टर्न कल्चर की इताहत करते हैं और हमारा वली हुआ। अल्लाह ये चाहता है कि हम वो लाइफ स्टाइल अपनाएं जो इलाही है। अल्लाह हम हर लम्हे ये सोचें कि हम क्या करें कि जो हमारे अल्लाह को पसंद आ जाए, यही कुर्बत है। अगर इंसान के जहन में ये बात बैठ जाए कि जिंदगी के हर लम्हे में इस बात की कोशिश करे कि अपने अल्लाह की पसंद और नापसंद का ख्याल रखे, तो बस यही कुर्बत होगा, यही अल्लाह की कुर्बत है। अलग से कोई बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है उसमें क्या क्या करना है क्या नहीं करना। तो यहां पे इंसान मसावात, इनकिसारी, कल्चरल एतबार से सबको एक, एहराम में दूसरी चीजों में कोई फर्क नहीं है, यानी दुनिया के जितनी चीजें हैं, चाहे वो सामाजिक चीजें हों, चाहे रसूमात हों, चाहे खानदानी चीजें हों, चाहे वो कल्चर हो, सबको तोड़ के एक इलाही माहौल को पेश किया गया और एक ऐसा कैंप लगाया गया कि जिसमें इंसान एक तूलानी मुद्दत तक अपने आप को उस इलाही माहौल में ढालने की कोशिश करे ताकि जब वहां से आए तो अल्लाह का वाकई और खालिस बंदा बन के निकले। अब ये और बात है कि

0: उस फलसफे को भुला देते हैं और वहां जाके भी वो नहीं हो पाते हैं कि जो अल्लाह चाहता है। इसीलिए कहा गया कि जब इंसान ज्यारत पे जाए तो जैसा गया वैसा ना आए। बदल क्या है? जब इंसान हज पे जाए तो जैसा गया है वैसा ना पलटे, ये दुआ करके जाए। पहले ही कदम यह है कि पालने वाले हमको ऐसा ना पलटाना, वरना फिर ये तो सिर्फ निगाहों की ज्यारत होगी, बस जाहिरी चीजें होंगी। कहा गया कि हज दीन से कुर्बत के लिए, करीब होने के लिए, यानी जो दीन का सिस्टम है, जब इंसान हज करके आता है तो जो दीन का सिस्टम है इंसान उससे करीब हो जाता है, नजदीक हो जाता है। और जब इंसान दीन से कुर्बत और दीन की तकवियत, दो अलग चीजें नहीं, अगर इंसान दीन से करीब होगा तो दीन खुद ब खुद करीब होगा। खुद दीन बनवाने सिस्टम कभी है, इसमें कोई शक नहीं, वो कमज़ोर नहीं है, उसके अंदर ये सलाहियत है कि सब पे गालिब आ जाए। कुरान की आयत है, ये बारह हम पेश भी कर चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ पे जो दीन की तकवियत है वो ये कि जो माशरे में, समाज में, अमली सूरत में दीन है ये कितना कवी है, हमारे अंदर दीन कितना कवी है। मिसाल के तौर पर पर्दा एक कवी चीज़, इसमें कोई शक नहीं, हमारे माशरे में पर्दे का कल्चर कितना कवी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। लिहाजा जब हम दीन पे अमल करेंगे और मुख्तलिफ जिहाद से उसको समझेंगे, फ़लसफे को समझेंगे, उसको अपनाएंगे, उससे करीब होंगे, तो जितना हम दीन से करीब होते जाएंगे उतना दीन हमारे माशरे में कवी होता जाएगा। दीन का कवी होना ऐसा नहीं है कि मसलन हम वैसे ही हो दीन, नहीं, दीन का कवी होने का मतलब ये कि हम कवी होंगे क्योंकि हमारा दीन है, हम उस पर अमल कर रहे हैं। इंसान जिस सिस्टम को फॉलो करता है उस सिस्टम की जो कुव्वत होती है जब फॉलो करता है तो उसके अंदर आ जाती है। अगर कुरान ने कहा है कि मसलन इसके अंदर ये सलाहियत है कि दूसरे अदियान पर गालिब आ जाए, तो कौन गालिब आएगा? जो उस पर अमल करेगा वो गालिब आएगा। ये इम्तियाज, ये इनाम अमल करने वालों को मिलेगा। ऐसा थोड़ी है कि अमल करने वाला अलग है और फिर वो एक अलग कोई चीज है कि जो गालिब आए। तो लिहाजा जितना इंसान दीन से करीब होगा उतना सही मानों में देखा जाए तो दीनदार कवी होगा, दीन कवी होगा। इज्तमाही तौर पर जैसे माशरे में कहा जाता है कि फलां कौम के लोग, फलां मजहब के लोग कवी हैं, फलां कौम के लोग, फलां मजहब के लोग कमज़ोर हैं, किस बुनियाद पे? या तो उनका सिस्टम कमज़ोर है या उस पर अमल कमज़ोर है। हमारा सिस्टम तो मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं, मुश्किल अमल की है। जिस दिन अमल मजबूत हो जाएगा उस दिन बनवान कौम हम मजबूत हो जाएंगे इंशाअल्लाह। लिहाजा इस फलसफे हज को समझने और उस पर अमल करें, करने की कोशिश करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा दीन से कभी भी करीब भी हों और बनवाने दीन कभी भी हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحزنون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون اللهم صل وسلم على صاحب الدعوة النبوية
1: اللهم صل على محمد وآل محمد
0: وصلاة الحيدرية
1: اللهم صل على محمد وآل محمد
0: والعصمة الفاطمية
1: اللهم صل على محمد وآل محمد
0: والحلم الحسنية
1: اللهم صل على محمد وآل محمد
0: وشجاعة الحسينية
1: اللهم صل على محمد وآل محمد
0: والعبادة السجادية
1: اللهم صل على محمد وآل محمد
0: والآثار الباقية
1: اللهم صل على محمد وآل محمد
0: والماثر الجعفرية
1: اللهم صل على محمد وآل محمد
0: والعلوم الكاظمية
1: اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
0: والجود التقوية
1: اللهم صل على

some practical things that we can do. First thing is, use less WhatsApp. كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَن يُحَدِّثُ كُلَّ مَا سَمَعَ. It is sufficient for a believer, it is sufficient for a person to be called or considered as a liar when he communicates, when he forwards, when he quotes whatever he hears. जो मैसेज आ रहा है आप चाहते हैं कि सबसे पहले मेरी मैं ग्रुप में पहुंचा दूं बस या अय्युहल लदीन आमनु इन जाअकुम फासिकुन बिनबअ फतबयनु अन तुसीबु कौमन बिजहालतिन फतصبح فاصبحتم على ما فعلتم نادمين. O believers, whenever an ungodly person, whenever a sinful person, whenever an immoral person brings a piece of information, brings a piece of news to you, verify the authenticity of the thing that he's bringing in. Verify the authenticity. यानी बता ये दिया गया है, चीज़ को आगे forward नहीं करना है जब तक कि यकीन ना हो कि जिसको forward किया जा रहा है वाकयतन वो सच्ची बात है. कितने लोगों के रोज़े बातिल हो जाते हैं. मैं नहीं कहता वो रोज़े बातिल नहीं होते कभी कभार, फ़िक़्ही हवाले से नहीं कह रहा, बेचारे नहीं जानते, वो समझ रहे होते हैं मौला का कॉल है. लेकिन जो भी अब देखें फैशन पेजेस, पाकिस्तान के फैशन पेजेस वगैरह देख लें, और भी हर चीज़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह उन्हें फ़रमाया, जो भी उनके दिल की बात होती है उस पर मौला का नाम लगा दिया जाता है. देर इज़ नो कोटेशन, हवाले की तो बात ही नहीं होती ना, देर इज़ नो हवाले. यानी आप कम से कम चलें नहजुल बलागा, देर इज़ नो नहजुल बलागा, देर इज़ नो गुररुल हिकम, there is no this book or that book, there is no kafi malla hazrul faqih amali, leave those books, right? At least there must be some sahih muslim, sahih bukhari or something, right? Has sayings of amir al mu'minin too, kallimun nas ala qadri uqulihim, bada mashhoor ma'ruf qawl, it's in bukhari, it's there in the shia books too, al kafi, right? There are some unanimous hadith too. When you're talking to the people, talk to them based on the intellect, based on the intellect that Allah has given to them, right? Very important, my dear brothers and sisters. You do not become a tool for the enemy. You do not become a tool. And हम लोग ऐसे हैं कि हमें कोई जॉब पे रखे या ना रखे हम खुद ही उसका काम करना शुरू कर देते हैं sometimes. You know, we are mashallah, you know, cheap labor with its all meaning, right? We want to forward? Okay, forward. And that's why I believe you. कभी कभी इंपॉर्टेंट मैसेजेस चले जाते हैं, कोई अगर भेज भी रहा होता है वॉइस मैसेज है वो, क्योंकि इतने फॉरवर्डेड मैसेज भेजते हैं कि मैं बंदा सोचता है कि ये आज भी कोई आया हुआ होगा फॉरवर्ड, 10 15 20 25 जमा हो जाते हैं. बट व्हाट आई मीन टू से, यू डू नॉट हैव टू बी द न्यूज़. अल्हम्दुलिल्लाह एवरी बिलीवर हैज़ स्मार्टफोन इन देयर हैंड, दे कैन गो एंड वेरीफाई द न्यूज़ देमसेल्फ, बट डू नॉट, बिकॉज़ समटाइम इट्स गोइंग टू ब्रिंग लोअर मोरल. When you are just forwarding whatever the enemy propaganda is, whatever the propaganda is from this person or that person, everybody has its own interest when they are writing a news or when they have the piece of information. It's very difficult to be neutral in this world, right? So it's very important for us, my dear brothers and sisters. We do not. That's a practical etiquette. And I trust you and I believe and I have this belief. Inshallah, once we start following this, a lot of things are going to get easier. You know, sometimes if you, galti se aapne himmat karke pooch liya, what is the source of the information, my dear brother? You know, we don't have information. It was forwarded from this WhatsApp group or that WhatsApp group, and this is our whole information. And unfortunately, then you know the effects of the fake news, right? Very important. We're living in a very difficult time. It's important to keep the morale of the believers very high. Coming to the third step, coming to the third responsibility. Keep the morale and keep the confidence of the believers very high. Shahadat Karbala mein hui thi, 11 imamon ki shahadatein hui hain, hamare 12ve ki bhi shahadati hai. Laysa minna illa shahidun, this is from Imam Hassan al-Mujtaba alayhi salatu wassalam. Sheikh Sadooq has quoted, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Laysa minna illa shahid, no exceptions. Everybody from the blessed family of the Prophet, they are not going to leave this world, but they would be martyred. Shaheed honge. Laysa minna illa shaheedun. Imam Hassan al-Mujtaba alayhi salatu wasalam. Imam Radha alayhi salatu wasalam is quoting in Uyun al-Akhbar.

जिसने नसीहत की लोगों के सामने, उसने नसीहत नहीं की, उसने जलील किया है। 10 लोग बैठे हुए, मैंने किसी गलती को, किसी को गलती करते हुए देखा, एंड आई केम इन सुपर मुजाहिद पर्सन, यू डिड रॉन्ग। अगर उसने प्राइवेट में गलती की थी, आपने पब्लिक में बता के उसकी गीबत भी की है और मोमिन की तौहीन भी की है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अमल अवाम, फॉर नॉर्मल पीपल, इमाम हसन अल अस्करी अलैहि सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला For them is what? Following the fuqaha, the maraji', the ulama. Amma hawadith al-waqi'ah, all the new things that are going to come in. Al-ihtijaj, Sheikh Tabrasi, farja'u ila ruwati hadithina. Bas main itni baat karke jaunga, baat ko aage badhate hain. Sixth is, always be a supporter of the mazloom. Because I'm coming from a background. अब ये मैं बात भी कहता हूँ तो कोई और शख्सियत जहन में आ जाती है, कहते हैं मजलूमों का साथी होना चाहिए। सही है, मजलूम का साथी हो और जालिम के खिलाफ, बट इन अ वे दैट इज इफेक्टिव, एटलीस्ट थ्रू अ कॉन्टेक्ट एंड सो मेनी अदर थिंग्स दैट कैन बी सेड अपॉन इट, बट दैट इज समथिंग व्हिच इज गिवन, व्हिच इज विद इन द डीएनए ऑफ अ शिया। If this is not there within the DNA of a Shia, he's not a Shia. Right? Akhri baat. Bas ye baat zaruri hai taki main chah raha hu, because I can, inshallah, conclude the topic. The final thing and the seventh thing is what? Have patience. It's not something, you know, when we say strategic, what do you mean strategic? Har koi istemal to lafz kar raha hota, strategic. What do you mean strategic? There's something that's called tactical. There's something that's called strategic. Tactical management is different than strategic management. Tactical plans are different than strategic plan. Tactical plans are only for a few months, only for a few weeks. There's a construction going up on in Hor Ontario. Usko to strategic construction kehni chahiye. But I'm telling you, in general, right? There's a tactical plan. Take this road, take that road, take this road, take that road. Right? But what is strategic plan? Strategic plan, it takes 15 years, it takes 20 years, it takes a generation. It takes generation to get the result. إِنَّ الْأَنَاةَ مِنَ اللَّهِ وَالْعُجْلَةَ مِنَ الشَّيْطَانِ Nabi ki hadith hai. Being haste, being rushing, is coming from shaitan. And having the sabr, having the patience, having the deliberation, having the composure, that is from Allah Almighty. You don't get result the next second. Malana kya ho raha hai, kaise ho raha hai? Wait and watch. Things are going to change. And ultimately, the victory is going to be for the believers. Yamla'ul arda qistan wa adla kama muli'a dhulman wa jawra. Indeed, the Qaim is going to reappear. He's going to fill this earth with equity and with justice the way it's filled with injustice and oppression. Hoga mushkilat hai. लेकिन परवरदिगार भी तो कह रहा है नसरुल्लाह करीब, इट्स वेरी वेरी नियर, वी कैन नॉट फैथम इट, बट द नसरुल्लाह इज हु द कायम ऑफ आल मुहम्मद अलैहि सलातु वसलाम। वी आर नॉट रिस्पांसिबल फॉर द रिजल्ट्स, वी आर रिस्पांसिबल फॉर द एफर्ट्स। अल्लाह ताला आपको ये नहीं पूछेगा आपने कितना किया, वो चेंज क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, ये क्यों हुआ, वो। अल्टीमेट विक्ट्री इज व्हाट यू एक्ट अपॉन, व्हाट अल्लाह हैज कमांडेड यू टू डू। सो Who is going to bring the real change? Musabbibul asbab, aap apne aap ko nahi banaye, wo Rab ki zaat hai. Samajh rahe? To bas inshallah, we keep these things in our mind. Little bit things that we can do inshallah. For the believers that are going through very terrible time. Terrible time materialistically. But as if we have said something, what? Everything that comes from Allah Almighty, even if it means a trial, It is a blessing of Allah Almighty. ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. زہرا کتاب سلیم کو اٹھائیے گا, کتاب الاحتجاج اور ساری کتاب, آپ حتیٰ ابن قطعبہ کی کتاب الامامہ و سیاست کو اٹھائیے. زہرا گئی ہیں, سواری پہ سوار ہوئی ہیں, حسنین ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, سرکار 3 راتیں گئی ہیں, 40 لوگوں نے وعدہ کیا آنے کا,

0: 40 में से कितने आ गए? 40 लोगों का था सर मुंडा के आना, 40 लोग भी होते तो अली कयाम करते। तीन आए, चार आए, रिवायतों का इख्तिलाफ। मुश्किलात है ना, आले मोहम्मद मुश्किलात से गुजरे, लेकिन क्या अली ने हार मान ली? अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो समझाने के लिए कह रहा हूँ, वरना फतेयाबी है तो सिर्फ और सिर्फ अहले ईमान के लिए है। वही लोग थे 25 साल बाद अली के दरवाजे पर इस तरीके से आ रहे थे कि मौला कहते थे कि इस तरीके से मेरे घर पर आए हैं, मेरे दरवाजे पर आए हैं, कि गोया हसन हुसनैन कुचल रहे थे और लोग अपनी बयात देने के वास्ते आ रहे थे अली अल मुर्तजा के घर, उनके दरवाजे पर। थिंग्स टेक टाइम, 25 ईयर्स, 25 साल में एक जनरेशन चेंज हो जाती है, बट टेक्स सम टाइम्स। द चेंज इज स्मॉल, द चेंज इज नॉट गोइंग टू हैपन द नेक्स्ट सेकेंड, बट इट्स गोइंग टू टेक टाइम। और जब मजलूमियत का जिक्र है तो अभी नाम नाम ज़हरा आया है। आप सोचिएगा कि क्या मजलूमियत का आलम है कि जब गिरिया भी कर रही हैं तो मदीने वाले आके कह रहे हैं अली और मुर्तजा से, ए अली आप इनसे कह दीजिए या तो सुबह गिरिया किया कीजिए या रात में गिरिया किया कीजिए, एक वक्त सेलेक्ट कर लें। सुबह गिरिया कर रही होती हैं, रात में गिरिया कर रही होती हैं, हमारा चैन, हमारा सुकून, हमारे बच्चे परेशान हो जाते हैं। अतारों वहीं पर पहले इमाम बारगी की तामीर की जाती है, पहले अज़ाखानी की तामीर की जाती है जिसे बैतुल हुज़्न कहा जाता था। बस अतारों सुबह सुबह जाती थी जहरा, पढ़ने वाले पढ़ते हैं, हसनैन का हाथ अपने हाथों में लेती थी, अपनी छोटी बच्चियों को साथ लेके जाती थी, पूरे दिन मातम किया करती थी, पूरे दिन गिरिया किया करती थी, रात में वापस आ जाया करती थी। लेकिन अतारों बस आप ये भी तो सोचिएगा मरसिए में क्या पढ़ा करती थी, सुब्बत अलैया مصائب لو انها صبت على الايام سرنا لياليها। अब बाबा जान मुझ पर इतनी तकलीफें आई हैं, अगर रोशन दिनों पर नाजिल होती तो सिया रातों में तब्दील हो जाते, शायद उस मुसीबत को भी बाबा जान की खिदमत में नकल करती हूँ। जब दरो दीवार के बीच में आई है फिर बाबा को याद करती है, वाह अबा वाह रसूल अल्लाह, हाय रे मेरे बाबा, हा कदा यफअलू बिहबीबतिक, आपकी प्यारी के साथ आपकी उम्मत ने क्या सलूक किया है। या फिज़ा इलैया फखुदूनी, ए फिज़ा जरा मेरी तरफ दौड़ कर आइए, मेरी खबर तो लीजिए, मेरा मोहसिन शहीद हो गए। अला लअनतुल्लाह अला कौमिल ज़ालिमीन। परवरदिगार हमारी इस कलील को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, मेरे मालिक नासों को रुमाल ज़हरा का हिस्सा बना। परवरदिगार मुमनीन जहां, मज़लूमीन जहां को परवरदिगार इस्तकामत और कामयाबी नसीब फरमा। परवरदिगार हम सब का खात्मा बिल ईमान व खात्मा बिल खैर फरमा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन।
1: When your family sleeps, your wiring keeps working. So make sure the vanes of your house are strong enough to protect it. Eurocables built into your walls, built for your family. Buy Eurocables, stay safe.